बलदिवाहे गुरु एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती समरका गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइया जस डिठ सब दुख जाए। तेक बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताए। सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। पंजा प्यारिया सोह साहिबजादियाँ चालिया मुकतियाँ हठियाँ जापियाँ तापियाँ जिन्हें नाम जपया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ किता तिना प्यारिया सच्यारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु बोले जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते बंद बंद कटाए। खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए। गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया। सिखी केसा सवासा नाल निभाही तिना की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोले जी वाहे गुरु बोले जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वार का ध्यान धर के बोले जी वाहे गुरु बोले जी। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत

तेर धोती का खाई हथ छुरी जगत कसाई नील वस्त्र पैरों में प्रवान मलेश धान लै पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके ऊपर किसे ना जाना देख चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिटे वे मत पिटे वन साडा पिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कौ नानक सच त्याई है सोच होवे ता सच पय पुड़।

0: करे वड़ी है दलाल के मुस्पिए करे नान का गैसो मिले चिखट काले दे महला पहला
1: जो जोर सरनाउनी आवे वारो वार जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए कुआर

चुप पी कर जाहे परवाह नहीं किस करी बाज सचे ना दरबार पर खर्च मंगा जब ऐ दे ता खाए दीवान को कलम का हमा तुमा मेल दर ले कपीड़ छुटे नानका ज्यों।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहपहंगुर प्रसाद चक कर चिहन यर बरन जात यर पात नहन जिह रूप रंग यर रेख पेख को कह न सकत किह अचल मूरत यन पाओ प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणिज त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन त्रिण कहत त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम भरनत सुमत कान हर बूंद बसोरो मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर के कब जन पल उन्हें जो गावै पल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बन आवै पागठड़े हर संत तुम्हारे जिन कर तन हर नामा परवान गणी से यह आए सफल तिना के कमां मेरे राम हर जन कह बल जाई केसा का कर चवर टोलावा चरण धूड़ मुख लाई जन्म मरण दोहु मह नाही जन पर उपकारी आए जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए सच्चा अमर सच्ची पातशाही सच्चे से तीरते सच्चा सुख सच्ची वड़ियाई जिसके से तिन जाते पखा फेरी पानी टोवा हर जन कै पीसण पीस कमावा नानक की प्रभ पास बेनंती तेरे जन देखण पावा गुरमुख बुढ़े कदे नाही जिना अंतर सुरत ज्ञान सदा सदा हर गुण रवहै अंतर सहज त्यान ओए सदा आनंद विवेक रहै दुख सुख एक समान तिना नदरी को आया सब आत्म राम पशान लिखै कतहि ना छूटियै खिनो खिन भूलन हार बखसनहार बखस लै नानक पारे उतार सुख टल गुर सेविया एनिस सहज सुभाए दर्शन परस आए गुरु के जन्म मरण दुख जाए होवै
ਸਿਫਤ ਖਸੰਦੀ ਨੂਰ ਅਰ ਸਹੁ ਕੁਰ ਸਹੁ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦੈ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੌੜੀ ਛੁੜ ਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਖਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਸੋਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਗ ਕਾਪੜ ਅੰਗ ਚੜਾਇਆ ਤ੍ਰਿਗ ਸਰੀਰ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਓ ਜਿਤ ਹੁਣ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਪੌੜੀ ਛੁੜ ਕੀ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ

जिने हर के चरण विसारे, जग जीवन दाता जन सेवक तेरे, तिन के तै दुख निवारे, रहो तू दयाल दया पत दाता, क्या एह जंत विचारे, मुक्त बंद सब तुझते होए, ऐसा आँख बखाने, गोरमुख हो वैसो मुक्त कहिए, मन मुख बंद विचारे, सो जन मुकत जिस एक लिव लागी, सदा रह हर नाले, तेन की गहन गत कही न जाई, सच्चा आप सवारे, परम पुलाने से मन मुख कहिया, ना और वार ना पारे, जिस नो नदर करे सोई जन पाए,

गए मशक्कत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: रंग प्रंग अनेक ना जापन करत बा, जिया अंदर जियो सब जान ला, सब कुछ तेरे बस तेरा घर भला, तेरे कर नंद वधाई तुद कर, माण मता तेज अपना आप जर, सर्ब कला भरपूर दिस जत कता, नानक दासन दास तुदया गै बिनवता सलो।
1: पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दोय दाई दाया खेलै सगल जगत, चंगियाईयां बुरी

करता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेल सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाच तरव हदू।

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कव्योवाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ द रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तव चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तम काब हो आप हाथ मोहे बचाव हो सुखी बसा मोरो परवारा सेवक सिख सब करतारा मोर अच्छा निज कर द करिया सबरन कवा संघरिया पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर ना त्याऊं जो वर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारिया है चौन चौन सत्र हमारे मारिया है आप हाथ मुझे वरिया मरण काल का त्रास नवरिया पूजो सदा हमारे पच्छा श्री आस्तोज जो करिया हो रक्षा राख लिह मोहे राखण हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुमह पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव की आओ वेदराज ब्रह्मा जूथी आओ जवन काल सब लोक सवार नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जच्छन उपजायो आदि अंत कै अवतार सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी सेवकन को सेवगुण सुख दिया सतरन को पालम बद किया काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचरिया स्थूल सपर कृपा दृष्ट कर फूल संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना घट घट के पट पट के जाना जब उद कर करा करतार प्रजा तरतब दी अपार जब या कर करत हूं कम हूं तुम मैं मिलत दे तर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही तेरा तनरालम जानत भेद भेद अरियालम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड़ चारत भेद जाको भेव न पावत भेद ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ काश भेद न जानत महादेव को कहत सदा सेव निरंकार का चीनत नह पैव आप अपनी बुद्ध है जेती मरणत पैना पैना तोह तेती तुमरा लखन जाए पसार केह बिद सजा प्रथम संसार एका रूप अनूप स्वरूप रंग पयो राव कहीं भूप अंडा जेर जित जकीनी अतभज खान बहर रज दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट पयो संकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचाम भव आद जुगाद स्वरूप सियाम भव अब रक्षा मेरी तम करो सिख उबार सिख संघरो दुष्ट जिति उठ बतत पात सकल मलेश करो नन काता जे अस्तु तब सरनी परी तन के दुष्ट दुखित होवै मरी
ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਭਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ, ਤਿਨਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ। ਜੋ ਕਾਲ ਕਉ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨ ਹੈ। ਰੱਛਾ ਹੋਈ ਤਾਹੀ ਸਭ ਕਾਲ, ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰਿੰਦ ਕਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਾਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨ ਕਮੋ ਹਰਹੋ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਕਰਮ ਸਭ ਹੋਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਸਵਿਸ ਕੈ ਨ ਕੋਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿੰਦ ਮੈਂ ਸੰਭਾਰ, ਕਾਲ ਫਾਂਸ ਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰ। ਜਿਨ ਨਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹ, ਦਾਰਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠਾਰ ਮੋਹ ਸਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਤਿਹਾਰੀ, ਆਪ ਹੱਥ ਦਾ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ। ਸਰਬ ਠਾਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ। ਸਵਈਆ ਪਾਈ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ, ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਅੰਕਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪ੍ਰਾਨ ਕੁਰਾਨ, ਅਨੇਕ ਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨੇ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭ, ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹਿ ਅਮੇਕ ਨ ਜਾਣੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨੇ। ਦੋਹਰ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕਉ ਸਾਢ ਕੈ, ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन बजियां बाधाइया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया शब्द तां गाव होरी केरा मन जनी मसाया कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदर हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्ज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सोके मन हम सारे कह नानक मन मेरे सदर होर नाले साचे साहेब क्या नाही कर तेरा करता तेरा सब किश है जिस दे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनका मन वसया वज शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाई आ कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाई आ सदा कुरबान कीता गुरु बेटा जिस दिए वड़ियाई आ कह नानक सुनो संत हो शब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सुभागा कर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया पंच दूत वास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे कह नानक तै सुखो तित कर अनहद बाजे आनंद सुनो बड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सागल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जानी सुनते मणित कहते पवित्र सतगुर रहया भर पूरे ਮਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰ ਪੂਰੇ ਮਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ ਮੁੰਦਾਵਣੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ ਜਿਸ ਕਾ ਸਭ ਸੇ ਆਧਾਰ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੈ ਜੇ ਕੋ ਪੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਈ ਉਧਾਰ ਇਹ ਵਾਸਤਾ ਜੀ ਨਾ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖ ਉਰਧਾਰ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਲਣ ਲਗ ਤਰੀਆ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਾਰ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ

नाही आपे तरस पयो तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थीव हरे तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिले।

निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुरु ढाक लिया मोहे पापी पड़दा। ढाकण हारे प्रभु हमारे जी प्राण सुख दाते, अविनाशी अवगत स्वामी पूरन पुरख बिधाते। उस्तत कहन न जाए तुम्हारी कौन कहे तू कद का, नानक दास ताके बलिहारी मिला नाम हर निमका। हम अपराधी गुण हंगार हम बेमुख मंदा, चोर जार जुआर हम पार कर जो हंदा। निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा। विश्वास घाती अकिरत कान मैं को न रखंदा, सिमर मरीदा ढाडी सतगुर बखशंदा। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत साढ़ बिख बिख खाई। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखहु शरणाई। सो कहो टल गुर सेवी आए अहन सुसहज, दर्शन परसया गुरु कै जन्म।

हस्ते राथ आस असवारी हर का मार्ग हृदान हारी मन तन अंतर चरण त्याया

हर सुख निदान नानक दास पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

हमें अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत छाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई, एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखहु सरनाई, एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास रखहु सरनाई, सो कहो टल गुर सेविया, अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय, होवै सिफत खसम दी, नूर अरसह कुरसह चटिया, तुद डठे सच्चे पाते साह, माल जन्म जन्म दी कटिया, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहु जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहु, सज्जन सच्चा पाते साहु, सिर साहु जिस पास बैठिया सोही है, सबना दावे साहु, सत नाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तनासरी महला पंजवां, त्रिपत भाई सच भोजन खाया, मान तन रसना नाम ते आया, त्रिपत भाई सच भोजन खाया, मान तन रसना नाम ते आया, जीवना हार जीवना, जीवन हार जाप साध संग रहाओ, अनेक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए, आन दिन कीर्तन हर गुण गाए, हस्ती रथ आस असवारी,

0: दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम मडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: श्लोक। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, दिवस रात दुई दाई दाया, खेलै सगल जगत।

0: कर कृपा हर नाम दिवायो सर्ब सुख हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाए।
1: श्लोक पवन गुरु पाण पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाए दाया खेले सगल जगत, जगत। संगे आईया बुरे आईया वाचक

परम पै पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए। इक्के उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, तेहे मिलन तुजम त्रास मिटाए। इक्के अरदास, इक्के अरदास, इक्के अरदास, पाठ कीरत की

0: एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुरप्रसाद आसा महला पहला। वार श्लोकां श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राजे के तुनी श्लोक महला पहला। बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते कीजे करत ना लागी वार। महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार एते चानन हुंदिया गुरबिन कोर अंधार। महला पहला।
1: नानक गुरु ना चितनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिलबवाड़ ज्यों सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे।

सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार, सुख मूर्त नाम निरंजन काया अकाकार। जतिया मसन तो उपजे देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार। चोरा जारा ते कुड़ियारा खारा बावे कार, एक होता

0: पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आर जा, पढ़िए जेते सास, नानक लेखे एक गल, और हो मैं चखना चाक महला पहला।
1: लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बो तीर्थ भव्या ते तो लव्या, बो पे किया दे दुख दिया, सोवे जी अपना किया, अन ना खाया, साध गवाया, बो दुख पाया, दूजा पाया, बस्तर ना पैरे अनस कहरे, मोन बिगुता क्यों जागे गुरबिन सूता, पागो पेताना अपना किया, कमाना अल मल खाई सिर शाई पाई, मूर खंडे पत गवाई, बिन ना वै किश थाए ना पाई, रहे बिबाणी मड़ी मसाणी, अंद ना जाने फिर पछताणी, सतगुर पेटे सो सुख पाए, सतगुर पेटे सो सुख पाए, अरकाना मन वसा, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते ने केवल, हमें शब्द जलाए, पौड़ी भगत

का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार जति सदावे जुगत ना जाने छड बे कर बार सबको पूरा पे होवे घट ना कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तो लिया जापे महला पहला वधी सो वजक नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारियां।

0: रोग पया जा सुख काम न होई, तू करता करना मैं नाही जाहो करी न होई। बलिहारी कुदरत बसिया तेरा अंत ना जाई लखिया रहाओ। जात मह जोत जोत मह जाता कलकला भरपूर रहया, तू सच्चा साहिब शिव सवाले जिन कीती सो पार पिया। कहू नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहया। महला दूजा
1: जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है। सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव। महला दूजा कृष्णं सर्व देवा देव।

0: कारण कर्ण समर्थ श्री धर राख लियो नानक के स्वामी। नानक नाम निरंजन जानियो कीनी भगत प्रेम लिव लाई ताते अंगद अंग संग पयो सायर तिन शब्द सुरत कीनी विरखाई गुर अमरदास की अकथ कथा है एक जी कछ कही ना जाई सोडी सृष्ट सकल तारण को अब गुर रामदास को मिली वडाई सोडी सृष्ट सकल तारण को अब गुर रामदास को मिली बड़ाई।
1: हमें दृष्ट शुभ करा हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मो वश करे सबे बाल सदा सुख मन वस दुख संसार खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो तल गुर सेविए एहनिस सहज सुभाए दर्शन।

0: जन्म मरण दुख जाए।
1: गुण गावे रविदास भगत जय दीप्तरलोचन, नामा भगत कबीर सदा गावे समलोचन। भगत बैन गुण रवे सहज आत्म रंग माने, योग ध्यान गुर ज्ञान बिना प्रभ अवर न जान। सुख दियो परीखत गुण रवै गौतम रिख जस गायो, कब कल सुजस नानक गोर। नित नव तन जग शायो।
0: गुरु गुर गुरु जप प्राणियो, शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै, रसन अह निस रसै सत कर जानियो। फुन प्रेम रंग पाइया गुरमुख त्याइया, अन मार्ग तजो भजो हर ज्ञानियो। बचन गुर रिद धरो पंच भू बस करो, जन्म कुल उदरो द्वार हर मानियो। जो ता सब सुख इत उत तुम बंसो, गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणियो।

0: अंत न पावत देव सबे मन, इंद्र महासेव जोग करी, हुन भेद बिरंच विचार रहो, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत श्रेष्ठ निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर ज्योत अर्जुन माहे तरी।
1: दृष्ट धरत तम हरण, दहन अग पापनासन, शब्द सूर बलवंत, काम अर क्रोध विनाशन, लोभ मोह वश करण, शरण जाचक प्रतिपालन, आत्म रत संग्रहण, कहण अमृत काल ढालन, सतगुरु काल सतगुरु तिलक, सत लागे सो पै तरै, गुर जगत फिरण सी अंगरो, राज जोग लहना करै।
2: सच तीरथ सच इशनाने, अर पूजन पाओ सच, सदा सच पाखंत सोहै, सच पायो गुर शब्द, सच नाम संगति बोहै। जिस सच संजम वर्त सच, कब जन कल वखाने, दर्शन परसै गुरु कै, सच जन्म परवान।
3: सतजुग तै माण्यो, छल्यो बल बावन पायो, त्रेतै तै माण्यो, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार, कंस किरतारथ कियो, उग्र सैन को राज अपै भगते जन दियो, कलयुग परमाने, नानक गुर।

दर्शन परसिया गुरु के जन्म मरण दुख होवे सिफत खसामी नूर अरसह कुरसह तुद डिठे सचे पात सह मल जन्म जन्म दी सजन सचा पात साह सिर साहां दे जिस पास बैठे आ सोहे सबना दावे सजन सचा पात साहो सिर साहां दे जिस